सामिन, एक नौजवान लड़की अपनी पाकीज़गी से महरूम ना होने के लिए तेज़ पात के दरख्त में बदल जाती है। एक नौजवान डैफोडिल फूल की तरह अपनी ज़िंदगी जारी रखे हुए है, जिससे अपनी खूबसूरती से प्यार हो जाता है। उसकी नामुमकिन मोहब्बत के लिए एक नौजवान औरत के आंसुओं से एक झील बनती है। यूनानी अफसानों में इस बारे में बहुत सी कहानियाँ मौजूद हैं कि फितरत, कुदरती मज़ाहिर और पौधे कैसे वजूद में आए। आज इस प्रोग्राम में हम एक कुदरती अजूबा दालियान कोई जेस को बयान करेंगे, जो कि अफसानों के मुताबिक आंसुओं पर मुश्तमिल है। मेलेटिस के बादशाह का एक बेटा और एक बेटी थी। बहन भाई एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, इस खौफ से कि यह मोहब्बत एक नामुमकिन और हराम मोहब्बत में बदल जाएगी। उसका भाई कावनोस मुल्क छोड़कर चला जाता है। बहन बिबलस भी एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़ती है और रोने लगती है। जब वो रोते हुए आंसू बहाती है, तो वो खुद को उस पहाड़ी से नीचे फेंक देती है। यहाँ पर उनके मुताबिक दालियान में झील बिबलिस के बहाए गए आंसुओं पर मुश्तमिल है। उसका भाई कावनोस जहाँ भी जाता है, अपने नाम से एक शहर कायम करता है। ये शहर, जिसका तذکرہ अफसानवी कहानियों में मिलता है, कदीम ज़माने में कावनोस का शहर था, जिसका साहिल बहिरा रूम तक वसी था। कावनोस एक खलीज में कायम किया गया था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ दरियाए दालियान के ज़रिए ले जाने वाले एलुवियम खलीज के मुँह को भर देते हैं और शहर समंदर से कट जाता है। कोई जेज़ दालियान का इलाका दरअसल इस तरह बनता है। यहाँ के झीलों को दुनिया के 7 पेचीदा तरीन झीलों के निज़ामों में से एक समझा जाता है। कोई जेज़ झील और बहिरा रूम के दरमियान ये इलाका एक बहुत ही ख़ास जुग्राफिया है। वो इलाका जहाँ समंदर और झील एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सरकंडों से ढके हुए रास्तों पर मुश्तमिल है। ये झीलें एक शानदार जगह हैं, जिसका मुतासिर को नज़ारा एक भूल भुलियों जैसा मिलता जुलता है।

एक माहौलियाती निज़ाम है जो बहुत से जिंदा प्रजातियों की मेज़बानी भी करता है। इन मखलूक़ात में से एक करेता करेतास हैं जो मादूम होने के ख़तरे से दो चार हैं। ये तकरीबन ऐसा ही है जैसे उनकी शनाख्त दालियान से हुई हो। इस तुजू साहिल जो समंदर और झील के समंदर पर वाक़ है, करेता करेता कछुओं के रहने और अफजाइश का इलाका है। ज़ख्मी समंदरी कछुओं के इलाज और तहफ़ुज़ के लिए यहाँ एक मरकज़ भी कायम है। ये तुर्की का पहला और वाहिद सी टर्टल्स रिसर्च एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर है। रज़ाकारियत पर मबनी ये मरकज़ करेता करेता कछुओं से मुतालिक मुख्तलिफ साइंसी तहकीकी मंसूबे भी चलाता है। सामिन, दालियान एक आलमी शोहरत याफ्ता जगह है, ना सिर्फ इसके खसूसी लगून सिस्टम और करेता करेता के लिए बल्कि इसके चट्टानों के मकबरों के लिए भी। चट्टानों के मकबरे कदीम शहर काउनुस में वाक़े हैं। कदीम ज़माने में एक अहम बंदरगाही शहर काउनुस आज यूनेस्को के आलमी सकाफती वरसे की आर्जी फहरिस्त में शामिल है। कदीम शहर में थिएटर, स्तुआ, अगोरा, हमाम, शहर की दीवारें और मंदिर के खंडरात काउनुस की अहमियत और हजम को जाहिर करते हैं। चट्टानों में तराशे गए शानदार मकबरे लोगों को एक और वक्त और दूसरी दुनिया में ले जाते हैं। काउनुस के बादशाहों ने देवताओं के करीब होने के लिए मकबरों को ऊंची और खड़ी चट्टानों पर तराशा था। अगरचे लीकियन रॉक के मकबरों से मिलते जुलते हैं, माहिरीन आसार कदीमा का कहना है कि ये मकबरे काउनुस के लिए बिल्कुल मुनफरिद हैं। ज़मीनी रास्ते से इन 2400 साल पुराने मकबरों तक पहुँचना मुमकिन नहीं है। आप सिर्फ कश्ती के ज़रिए उस तक जा सकते हैं। साहिल पर पहुंचने के बाद मकबरों को करीब से देखने के लिए 1 किलोमीटर की दुश्वार गुजार चढ़ाई करना ज़रूरी है, लेकिन मकबरों में दाखिल होना मना है। इस वजह से बहुत से लोग समंदर से मकबरों के हेलेनिस्टिक मंदिर जैसे अगवाड़े को देखने को तरजीह देते हैं। इन मकबरों को ऐसी जगह से देखना बहुत ज़्यादा मुतासिर कुन है जहाँ दरख्तों का सब्ज़ा समंदर के नीले रंग में झलकता है। दालियान एक ऐसा शानदार जुग्राफिया है कि उसके हर हिस्से से हैरत होती है। इनमें से एक आलमी शोहरत याफ्ता मिट्टी का गुसल है। कीचड़, जिसमें मादनियात की ज़्यादा मकदार होती है, गठिया और जिल्द की बीमारियों के लिए अच्छा कहा जाता है और यह ख्याल है कि यह झुर्रियों को दूर करता है। यही वजह है कि हर साल हज़ारों सयाह मिट्टी के हमाम का दौरा भी करते हैं। दालियान में बताने के लिए और बहुत भी कुछ है, लेकिन आइए अनातोलिया के आसार कदीमा में सबसे पहले का जिक्र करना ना भूलें। ये मालूम है कि काउनुस सॉल्ट, जो कदीम ज़माने में आँखों का मरहम बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, इसी में तैयार किया गया था। नमक के काम यहाँ हैरत की कोई इंतहा नहीं है। अनोखी मखलूक दालियान कोएजेज लगून सिस्टम में रहती है, जहाँ समंदर और झील आपस में मिल जाते हैं। जब ऊपर से देखा जाता है तो कुछ ऐसे फीते से तशबीह देते हैं, कुछ तसादुफी तौर पर खींची गई खमीदा लकीरों से, कुछ भूल भुलैयों से, समंदर से आयोडीन की बू इंजीर और देवदार के दरख्तों से निकलने वाली शानदार खुशबू के साथ घुल मिल जाती है। ये खुशबू लोगों को उन कदीम ज़माने की तरफ दावत देती है जहाँ अफसानवी कहानियाँ सुनाई जाती थीं। आज हमने दालियान के बारे में बात की जो अपनी झीलों के साथ तवक्कुआ से कहीं ज़्यादा एक तजुर्बा पेश करता है, जिसका एक सिरा एक झील है, एक समंदर का एक सिरा है। ढलवानों से मुजयन पत्थरों के दिलकश मकबरे, कदीम शहर के खंडरात, करेता करेता कछुए और मिट्टी के हमाम यहाँ काबिले ज़िक्र हैं। नस्ली खान देरमैन जो ओलू के कलम से तहरीर करदा ये प्रोग्राम आपने सुना। आइंदा हफ्ते तक अपने मेज़बान सगीर अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।